वन्याय वन्याय च कक्ष्याय कक्ष्याय च वन्याय वन्याय च कक्ष्याय चकक्ष्याय कक्ष्याय च चकक्ष्याय च चकक्ष्याय च चकक्ष्याय च कक्ष्याय च चकक्ष्याय कक्ष्याय

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

वन्याय वन्याय च कक्ष्याय कक्ष्याय च वन्याय वन्याय च कक्ष्याय चकक्ष्याय कक्ष्याय च चकक्ष्याय च चकक्ष्याय च चकक्ष्याय च कक्ष्याय च चकक्ष्याय कक्ष्याय